0: बजाज एक्सचेंज मेला में जम्मै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस्। जम्मै वैल्युएशन, जम्मै कैश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 10 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम सहित गेट गुराही दाम।
3: संपर्क फोन 082-562-4223। संपर्क मोबाइल नंबर 98-578-30-151 98-478-33-133 र 98-686-37-244।

0: एक्सचेंज मेलामा जम्मै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस्। जम्मै वैल्युएशन, जम्मै क्याश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 10 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम शहीद गेट गुराही दाङ।
3: संपर्क फोन 082562423। संपर्क मोबाइल नंबर 98578301, 98478313133 और 98686

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड

राम राम सञ्जीव 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। धाङका लमई नगरपालिका से विद्यार्थी हन 4 दिन गर्मी विदा दे राखल। अत्यधिक गर्मी बढ़ल कारण नगरपालिका से असार 9 गते से 12 गते समय 4 दिन गर्मी विदा दे लख हो। नगर शिक्षा समिति को असार 5 गते बैठक से करलक निर्णय अनुसार विद्यार्थी का लाग गर्मी विदा देना निर्णय करगिलक जना राखल। बढ़्दो गर्मी का कारण विद्यार्थी का स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पर लगलग हुन से बर्खे विदा से कट्टी करना कहकन 4 दिन विदा देना निर्णय करगिलक नगरपालिका जना राखल। कोराही मापन केन्द्र त्यूर अधिक गर्मी लमही क्षेत्र में हुना कर्था। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका से 2,44,95,00,000 रूपया का बजेट आन राखल। आर्थिक वर्ष 2082-83 आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 में 38 करोड़ बढ़ी बजेट अनलक हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का उप प्रमुख स्यानी चौधरी से उक्त बजेट प्रस्तुत करलक हुई। ज्याकर्म आंतरिक स्रोत से 54 करोड़, स्थानीय तह राजस्व बाँडफाट सहित मालपोत रजिस्ट्रेशन से 24 करोड़, ढुंगा गिट्टी विज्ञापन कर से 15 लाख से आमदानी हुना लक्ष्य ले गिल्बा। संघीय सरकार का समानीकरण अनुदान 28,77,00,000, सशर्त अनुदान 67,23,00,000, समपूरक अनुदान 60,00,000, संघीय विशेष अनुदान 88,00,000, राजस्व बाँडफाँड संघहोर 24,09,57,000, प्रदेश सरकार से सशर्त अनुदान 2,02,50,000, समपूरक अनुदान 1,50,00,000, विशेष अनुदान 20,00,000, राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 2,41,86,000, सड़क बोर्ड से 1 करोड़, नगर विकास कोष 2,10,00,000 कैकन कुल 2,44,95,00,000 आमदानी हुना लक्ष्य धर्गिल्बा। चालू होर 1,39,60,00,000 अर्थात 56%, पूंजीगत होर 1,38,28,000 अर्थात 42.35%, बजेट ओ वित्तीय अनुदान होर 4 करोड़ अर्थात 1.65%, बजेट विनियोजन करगिल्बा।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हार्ट जोड़ने, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती।

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ।